आकाशवाणी पुणे गायक वृंद ने गायी रचना आपने सुनी समूह स्वर में। श्रोताओं अब हम सुनाने जा रहे हैं मनोहर सबनिस के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, मनोहर सबनिस के स्वर में आप सुन रहे थे संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। आइए कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं मधुकर कुलकर्णी की रचना अंजनी केळकर के स्वर में।

अंजलि केळकर ने गायी हुई मधुकर कुलकर्णी की इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब हम समाप्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे रागम 24/7 DTH चैनल पर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिती थी। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आज के हमारे कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत प्रस्तुत है राग बैरागी में सरोद वादन. आज के हमारे कलाकार हैं पंडित सुर रंजन. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं कुमुद रंजन सांतरा. तो आइए सुनते हैं राग बैरागी में सरोद वादन. कलाकार हैं पंडित सुर रंजन.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ सरोद रिसाइटल इन राग बैरागी. Our featured artist this morning, Pandit Suro Ranjan. The accompanying artist is Kumud Ranjan Chhatra on the tabla. Listen then to a sarod recital in Rag Bairagi. Our featured artist, Pandit Suro Ranjan.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे सरोद वादन, राग बैरागी में आबद्ध सरोद वादन प्रस्तुत कर रहे थे पंडित सुर रंजन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे कुमुद रंजन सातरा। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज की हमारी अगली प्रस्तुति राग ललित पंचम में ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अशोक मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर सनातन गोस्वामी। तो आइए सुनते हैं राग ललित पंचम में ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति।
1: यू आर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल इन राग बैरागी। आवर आर्टिस्ट वॉज पंडित शूरो रंजन। एकम्पनिंग द आर्टिस्ट वॉज कुमुद रंजन शात्रा ऑन द तबला। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH, Anytime Indian Music. Continuing our morning concert, now listen to a Hindustani vocal recital, A Khayal, by our next artist, Pandit Shondipon Samajpati, Rag Lalit Pancham. The accompanying artists are Ashok Mukhopadhyay on the tabla and Sanatan Goswami on the harmonium. Listen then to A Khayal in Rag Lalit Pancham. Our artist, Pandit Shondipon Samajpati.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग ललित पंचम में सुन रहे थे ख्याल गायन। आज के हमारे कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अशोक मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर सनातन गोस्वामी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की प्रस्तुति थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल, अ ख्याल इन द राग ललित पंचम। आवर आर्टिस्ट वाज पंडित संदीपन समाजपति। द अकंपनिंग आर्टिस्ट्स वेयर अशोक मुखोपाध्याय ऑन द तबला एंड सनातन गोस्वामी ऑन द हारमोनियम। This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शर्वरी अरगड़े द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय गायन। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग बिलास खनी तोड़ी सुनते हैं। विलंबित एकताल मिनिबद्ध रचना के बोल है होरी के मदमात और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है त्यजरे अभिमान। सात संगत तबला योगेश सोनी और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं राग बिलास खनी तोड़ी, कलाकार शर्वरी अरगड़े।

श्रोताओ, अभी आपने सुना राग बिलास खनी तोड़ी, प्रस्तुत किया था शर्वरी अरगड़े ने। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे योगेश सोनी और हारमोनियम पर उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं शर्वरी अरगड़े द्वारा प्रस्तुत राग मालकंस, विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है दया करो अवतो, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है आए पी मोरे मंदिरवा। साथ संगत तबला योगेश सोनी और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं राग मालकंस, कलाकार शर्वरी अरगड़े।

श्रोताओ, अभी आपने सुना राग मालकंस, प्रस्तुत किया था शर्वरी अरगड़े ने। आपके साथ तबले पर थे योगेश सोनी और हारमोनियम पर उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पूरिया कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज सो बना ब्याहन आया, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोरे घर आजा. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ हैव फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय मुजाहिद हुसैन खां. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the harmonium by Ashok Kumar. Mujahid Hussain Khan first presents rag Puriya Kalyan, in which you will hear the Vilambit Khayal set to Ektal, and this will be followed by the Chota Khayal set to Drut Teen Tal.

0: गाया राग पुरिया कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं पीर न जानी बलमा, और तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग पुरिया कल्याण। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, वी नाउ हैव Mujahid Hussain Khan presenting Rag Malkons, in which you will hear the Bada Khayal set to Vilambit Ek Taal, followed by a Tarana set to Teen Taal.

0: अभी आप मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग मालकों सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग मालकोंस वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय मुजाहिद हुसैन खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक एंड ऑन द हारमोनियम बाय अशोक कुमार। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं मिलिंद तुलाणकर का जल तरंग वादन, राग चंद्रकंस, मध्यलयगत झपताल में निबद्ध है, द्रुतगत एकताल और तीनताल में निबद्ध है, साथ संगत है तबले पर विनायक फाटक। आइए सुनते हैं मिलिंद तुलाणकर का जल तरंग वादन, राग चंद्रकंस।

अभी आपने मिलिन तुरानकर का जल तरंग वादन सुना। साथ संगत की थी तबले पर विनायक फाटक ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं उस्ताद हमीद खान का सारंगी वादन। प्रारंभ में राग सरस्वती, विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। साथ संगत है तबले पर विठल क्षीरसागर। आइए सुनते हैं उस्ताद हमीद खान का सारंगी वादन।

अभी आपने उस्ताद हमीद खान का सारंगी वादन सुना, आइए सुनते हैं उस्ताद हमीद खान ने सारंगी पर बजाई पीलू धुन। साथ संगत कर रहे हैं तबले पर विठ्ठल क्षीरसागर।

अभी आपने उस्ताद हमीद खान का सारंगी वादन सुना। साथ संगत की थी तबले पर विट्ठल क्षीरसागर ने। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग दरबारी कनाड़ा पर सितार वादन. कलाकार हैं काजल चट्टोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मौलोय बासु. तो लीजिए प्रस्तुत है राग दरबारी कनाड़ा पर सितार वादन. कलाकार हैं काजल चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani instrumental recital. Listen to a sitar recital in the rag Darbari Kannada. Our artist this evening is Kajol Chattopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Moloy Basu. Listen now to the sitar in the rag Darbari Kannada. Our artist Kajol Chattopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग दरबारी कनाड़ा पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे काजल चट्टोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मोलॉय बासु। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग दरबारी कनाड़ा। Our artist this evening was Kajol Chattopadhyay. Accompanying him on the tabla was Molloy Basu. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा वजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was राग जोग। With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: दोषी। बात भी ऐसी है ना, एक बात सुरीली होती, एक बात बेसुरी होती
1: जी।
0: तो अगर बेसुरी बात हो रही है तो काहे को पसंद आएगी, वो तो हम लोग पसंद नहीं करने का, और हाँ हाँ जी हाँ करके अलग हो जाएंगे, लेकिन यार कूड़ा आदमी है, इसको पता नहीं कुछ।
1: तो पूरे ताल्लुकात आपके आकाशवाणी के साथ बड़े खुशगवार रहे।
0: अरे वाह वाह वाह लखनऊ, बस अब क्या बताएं, ये आप देखते हैं लान बना है ना
1: जी,
0: इसमें हम किसी जमाने में कबड्डी खेलते थे।
1: कबड्डी और आप
0: रात, अरे कबड्डी, अरे सवाल ये पैदा होता है, गाने बजाने वाला खाली ये थोड़ी कि सितार बजा लिया गा लिया, अरे बड़े मनचले होते हैं वो, उनको आप देखें तो कुश्तीबाज होते हैं, लकड़ीबाज होते हैं, बड़ा मजा लेते हैं वो।
1: आप पिछले जमाने के जितने बड़े
0: हाँ,
1: गाने
0: जितने
1: वाले थे,
0: और देखिए ना गाना बजाना संगीत और कुश्ती बराबर की जोड़, हमारे मामू कहते थे ये बराबर की जोड़ है,
1: कुश्ती और संगीत,
0: संगीत बराबर की जोड़ है, कुश्ती वाले को क्या करना है, धड़ बैठक लगाएगा, मेहनत करेगा, गजा खाएगा, हर बुरे फेल से बचेगा, हर ऐसी चीज नहीं लेगा, वही संगीत है बिल्कुल, इसको भी साधना करना है और रियाज करना है, अच्छी गजा खाना है, हर बुरे कामों से हर तरफ से बच जाना चाहिए, तो जाके तो हमारे मामू कहते दोनों की जोड़ बराबर है। और इबादत में कहते थे कि कोई मजहब कहो, मंदिर जाए, गिरजा जाए, मस्जिद जाए, इबादत ही तो करेगा, तो ये संगीत भी इबादत है।
1: अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है खान साहब कि आप बड़े बड़े पैसे वाले प्रोग्राम छोड़ देते हैं, अगर आपको आकाशवाणी से कोई प्रोग्राम आए तो आकाशवाणी को तरजीह देते हैं और कीमती प्रोग्राम अक्सर छोड़ देते हैं,
0: ऐसा
1: क्यों?
0: हाँ हमने किया है, ऐसा भी किया है, लेकिन क्यों, वो जमाना कुछ और था, उस जमाने में जो आकाशवाणी से हमें पैसे मिलते थे वो बहरहाल गनीमत थे, थोड़ा कम सही, थोड़ा कम सही, अब बहुत फर्क हो गया है। अब फर्ज कीजिए कि हमको 40-45 हजार रुपया कहीं मिला तो आकाशवाणी 4,000-5,000 दे, तो कितना फर्क हो गया, तो मजबूर होकर इंसान क्या करेगा। अगर आज आकाशवाणी भी हम लोगों को जो हम बाहर पैदा करते उसका आधा पैसा भी दे तो अभी भी हम कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ने वाले।
1: नहीं लेकिन आप तो आते हैं आकाशवाणी पर बावजूद इसके।
0: नहीं, यहां जो आए हैं आपको मालूम होना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी याद हमको खींच के ले आई है कि यार यही लखनऊ है जहां से हम आगे बढ़े हैं, और आज इसका दिन मनाया जा रहा है 50 साल, तो चाहे कुछ भी सही, चलो भाई हम भी बढ़ोतरी में वहां भी पहुंच जाएं और मजा लेने जरा।
1: संगीत वाला तो कभी बूढ़ा नहीं होता साहब, हम कैसे माने कि आपकी बढ़ोतरी है,
0: नहीं,
1: क्योंकि आपके आपकी तो जो रियाज आया है बजाने में जो जवानी है अभी तक और लगातार मतलब खिल रही है उसको तो मैं बढ़ोतरी मानने
0: में। देखिए एक बात बताएं, ये जरूर है लोग कहते हैं बुढ़ा बुढ़ा, बुढ़ा बुढ़ा नहीं होता, बल्कि और ज्यादा तासीर पैदा हो जाती है, शक्ति जिसको कहते हैं, जब दुआएं मिलती हैं बुजुर्गों की तो दवा दवा काम करती है इसमें, ऐसा नहीं है कि खाली जबान से कह दिया, नहीं उसके असरात होते हैं, एक तरफ रियाज, दूसरी तरफ नमाज पढ़ें उस मालिक को याद करें, तीसरी तरफ बुजुर्गों की दुआएं हैं, तो आगे बढ़ेगा। इसमें लोग कहते हैं बुढ़ा बुढ़ा देखने में है, काम उसका वही होगा, काम में फर्क नहीं आएगा।
1: पिछले 50 सालों में, यानी 50 साल पहले तो आपकी आवाज लोगों ने रेडियो से, आकाशवाणी से, इस इलाके ने, पूरे देश ने सुनी
0: जी।
1: उसके बाद तो आप दुनिया के बड़े बड़े शहरों में गए, बड़ी बड़ी महफिलों में आपकी शहनाई की आवाज लोगों ने सुनी
0: जी।
1: इस पूरे सफर पर जब आप निगाह डालते हैं तो आपको आज सुकून महसूस होता है, लगता है कि आपने कुछ हासिल किया है या कुछ है जो बाकी है हासिल करने को?
0: नहीं हासिल लो, ये ऐसी चीज है कि अब क्या बताएं आपको, अब हमको पता चला सुर कैसे लगता है
1: 50 साल बाद
0: जी, सुर लगने में क्या बात होनी चाहिए, तो उसके लिए जरा ताकत और जरा टाइम चाहिए, और ये दुनिया का दस्तूर है कि जब इंसान बुढ़ा होता है, और वो सभी लोग चलते चलते चलते टाइम आया चले गए, तो अब हमारे ये समझ में आया कि संगीत और सुर, संगीत तो है ये सबको जानता है, सुर देवता जो है वो कैसे मनाए जाएंगे और उनमें क्या कैफियत होगी, और वो सुर ज्यादा पसंद है मुझे। एक तो यह है कि अस्थाई, अंतरा, संचाई, भोग सब कह के जा रहे हैं, ताल मात्रे खूब तालियां बज रही, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, एक तरफ तो वाह वाह है और एक तरफ एक दाद होती है हाय, तो वाह वाह और हाय में बहुत फर्क है। हाय कब होगी कि जब

0: जब यूँ चलेगा थोड़ी देर तो कुछ देर के बाद पब्लिक पर इतना असर पड़ जाएगा जो बात करना भूल जाएगा।
1: अक्सर आपके आलाप में यही जादू है, जब कभी आपने दिल से बजाया है। अभी

0: मैंने देखा कि आप जब बजाने बैठते हैं तो कुछ लोग जैसे बड़े वो थोड़ी देर पहले ताम झाम नखरे वगैरह करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आप जब भी आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए आपने शहनाई उठाई ठीक हुए और एकदम एक सही शोर से आप शुरू हो जाते हैं। ये रियाज है आपका, ये इतनी लंबी जो आपकी संगीत यात्रा रही है उसकी वजह से जो महारत हासिल हुई है?
1: रियाज तो है ही है, रियाज तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। बालाजी मंदिर में हमारे मामू ने 18 बरस रियाज किया तो हमने वहां 3-3.5 बरस बराबर रियाज किया, तो कुछ तो है ना। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हम रियाज करते हैं लेकिन बैठने के बाद किसी को पता नहीं है। हम सिर्फ आधा मिनट शुरू करने से पहले जरा अपने गुरुओं को सुमिर लेता हूँ और वो बाबा को याद करता हूँ जिनकी दुआएं हैं, बस इसके बाद शुरू हो गए, फिर तो कोई फिक्र नहीं।
0: संगीत साधक के लिए गुरु महत्वपूर्ण होता है और साधना?
1: अब क्या बतावे, आपका जमाना तो बड़ा बेढब है, वरना असल है यही कि गुरु की पैरवी, गुरु का कदम चूमना और उनसे दुआ लेना, असल वही है। गुरु की बद्दुआ जो पड़ गई खराब हो गया, गुरु की दुआ लग गई तो आगे बढ़ गया। एक ऐसा वाकया है, हम नाम नहीं देंगे, गुरु थे वो, उनसे कुछ याद किया था लेकिन बाद में आके जब खूब तगड़े तैयार हुए आगे बढ़ गए तो उनकी निगाह में गुरु कुछ नहीं थे। वो खाली गुरु ने जब देखा कि यह हालत इसके, खाली कह दिया था थू, बस यूं कह रहा थू। कुछ दिन के बाद हालत दूसरी हो गई, गाना भी गया और हाथ फैला दिया लोगों के आगे, या अल्लाह तौबा, बस हम क्या बताएं। तो ये होता है, गुरु का पैर तो दबाना पड़ेगा और गुरु से आशीर्वाद लेना पड़ेगा, और जब आशीर्वाद मिल गया तो एक दौलत है आपके पास जो खर्च होने की नहीं है, उसको जितना चाहे खर्च कर डालें वो बढ़ती जाएगी, खर्च नहीं होगी।
0: अच्छा, इधर लोगों को मैंने देखा है कि वो कभी किसी गुरु से सीखते हैं, कभी किसी गुरु से सीखते हैं, आपका क्या ख्याल है, एक ही गुरु से सीखना
1: नहीं? ऐसा नहीं, किसी से भी सीखे, एक जर्रा बराबर सीखे, लेकिन फिर उतना मान रखे कि हाँ इतनी चीज हमने फला से ली है। बेईमानी ना करे कि हमारे बाप ने बताया, हमारे दादा ने बताया, वो गलत है, वो हम नहीं मानेंगे। अगर उसने याद किए, हुक्म तो ये है, हमारे उस्ताद ये कहते थे सीखना तो दरकिनार, सीखना तो है ही है, सीखा तो है ही है, वो हक हो गया, लेकिन अगर तुमने किसी का सुन के भी नकल किया है और उसमें तारीफ मिल रही तो सास छोड़ कर कह देना इतना टुकड़ा हमें फलाने से सुना है, ये है असल में। लेकिन कोई नहीं करता, माफ कीजिएगा, हमने खूब गौर कर लिया, नकल करते हैं लेकिन नाम लेंगे अपने बाप का और दादा का और फलाने का, और काम कर रहे हैं किसी दूसरे का, तो उसमें क्या होता है, पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन आंखों पर पर्दा पड़ जाएगा, वो सुर में तासीर नहीं होगी।
0: आप आज के जो नौजवान गायक और वादक हैं
1: जी,
0: उनको मतलब अब ये कहना तो मुश्किल है कि आप उनको क्या सलाह देंगे, लेकिन उनको क्या करना चाहिए?
1: उनको कुछ नहीं करना है, मामूली सी बात है। अब क्या बताएं, एक बात आ गई तो लीजिए कह देता हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात है, सुर सच्चा है ना, सच्ची बात है ना, सुर के अंदर जब डूबेगा करेगा तो ईश्वर दिखाई देता है, लोग कहते हैं है सही है। हमारे मामू कहते हैं इसका एक अमल है, इसका एक जोग है, क्या है, मामूली सा है लेकिन कर नहीं सकता आदमी, वो ये भी कहते थे हमको, कहते थे कि अच्छा एक दिन तुम झूठ ना बोलना कोई चीज भी सही। हमारे पास 2 रुपया है, एक आदमी कहता है हाँ साहब 1 रुपया की जरूरत है, हम कह रहे हैं नहीं है, वो झूठ हो गया। हम जाके कहीं शराब पी के आ रहे हैं, किसी ने पूछा खान साहब कहाँ से आ रहे हैं, हम वहां गए थे, झूठ हो गया। यानी मतलब ये कि सुबह से लेके जिस वक्त से उठा है वो और रात के सोते वक्त तक एक लफ्ज भी कहीं झूठ ना बोले, ये हमारे गुरु कहते थे। कहीं ऐसे ही तुम एक दिन निकाल ले गए, एक हफ्ता निकाल ले गए, एक महीना निकाल ले गए, एक साल निकाल ले गए, कतई झूठ नहीं बोला। तो वो कहते थे जिस वक्त तुम झूठ बोल दोगे वो भी सच हो जाएगा, वो भी सच हो जाएगा। क्या मतलब निकला, उसका मतलब ये निकलता है जब हमारी जबान से हर वक्त सच है सच है सच है सच है, तो सास बजाइए गाना गाइए वो भी सच्चा बोलेगा, उसमें गलत नहीं आएगा।
0: आपको अपने शहर से बड़ा लगाव है खान साहब
1: जी।
0: एक जगह आपने एक भेंटवार्ता में कहा था, शायद अमेरिका के किसी शहर में आपसे पूछा गया था कि क्या आप यहाँ बसना पसंद करेंगे, तो आपने 1 मिनट के बाद हंसकर यह कहा था कि अगर तुम बनारस यहाँ बसा दो तो हम यहीं रहेंगे।
1: उसकी वजह यह थी, उसने कहा कि इतना बड़ा कलाकार हिंदुस्तान का है और इसको यहाँ रख लेना चाहिए, तो उनके यहाँ पैसे की कमी तो है नहीं, $1,000,000। तो उसका बड़ा भारी आदमी, बहुत बड़ा पैसे वाला, उसने कहा हाँ साहब आप यहाँ रहिए। हम कहा भाई हम कैसे रहेंगे, हम अकेले तो हैं नहीं, हमारे साथ ग्रुप है, तुम खास साहब उनको भी लेकर रहिए। हमका खाली वही थोड़ी है, उनके घर के लोग हैं, एक आदमी के साथ 8-10 आदमी हैं, फिर कितने होंगे, उस सबको ले आइए, आप यहाँ रहिए, स्कूल है, आप

0: बताइए। तब हमारे साथ में एक जो हमारे तर्जुमान थे सिगरेटर, उन्होंने कहा कि भाई साहब अब तो कोई जगह नहीं है। हम कहा हम संगीत वाले हैं, हम अभी भी जगह निकालेंगे। लेकिन क्या जगह निकालेंगे, अब तो सब कहता है डॉलर लीजिए, मोटर लीजिए, मकान लीजिए, नौकर लीजिए, हम सब आपको देते हैं, फिर आप क्या करेंगे। हम कहा सुनो, हम कहा हाँ साहब बिल्कुल, हमारे हजारों आदमी हो जाएंगे ग्रुप के आदमी को मिला के सबको, लेकिन एक बात है कि क्या, हम कहा देखिए मैं वो आदमी हूँ कि जब हिंदुस्तान में घूमता हूँ, बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, तो हमको बनारस दिखाई देता है, और जब हम हिंदुस्तान से बाहर आते हैं, अब हम अमरीका में आए हैं, लंदन जाएंगे, फ्रांस, जर्मनी, तो हमको हिंदुस्तान दिखाई देगा। लेकिन हाँ, हमका तो आप अमेरिका में बनारस बना दीजिए, वैसे ही शिवाला, वैसे ही सीढ़ी, वैसे ही गंगा, हम यही रहेंगे, कहीं नहीं। कहते हैं नो नो, तो हम कहा इधर भी नो नो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं रहेंगे।
1: आपकी शहनाई जब कभी सुनी जाती है कहीं भी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने हजारों साल के पिछले अतीत में पहुंच गए हैं।
0: जी,
1: आपको ये भी कहा जाता है कि आपने नए जीवन की शुरुआत पर जो मंगल वाद्य बजाया जाता था उसको आपने शास्त्रीय दर्जा दे दिया। ये इतनी बड़ी सिद्धि, इतनी बड़ी महारत, इसके पाने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या शेष रह गया?
0: नहीं, मैं बताऊं आपको, बड़े लुत्फ की बात है, जरा बनारसी ढंग में भी बोल सकते हैं। आवा भैया तने बैठा, देखा गुरु लोग का कहत रहन, जरा सुन ला का हो तने हिया आवा, देखा ये का कहत हमन। उसमें एक बात थी, ये जितनी भी चीजें हैं इस सब असर वही हम जो पहले कहा है, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, मजार शरीफ जाओ, वहां जाके कुछ सिद्धि करो, वहां से मिलेगा। तो ये सब हुआ है हमारे साथ, और हुआ है ये हमारे साथ, हमारे गुरु के साथ ये सब हुआ है।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह खान साहब,
0: आपके सबको हमारा नमस्कार कबूल हो।
2: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। ये था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे थे जीत जरधारी, और आइए अब सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बजाया राग जय जयवंती।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई पर बजाया कजरी धुन, रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार है पंडित नरेंद्र नाथ धर. राग है जौनपुरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ और दो गतें. विलंबित गत और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर राम कुमार मिश्रा. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग जौनपुरी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला.

पंडित नरेंद्र नाथ धर। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित नरेंद्र नाथ धर से राग रागेश्री में आलाप और दो गते, विलंबित गत और द्रुत गत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर, यू विल लिसन राग रागेश्री।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे पंडित नरेंद्र नाथ धर। संगत कलाकार थे तबले पर राम कुमार मिश्रा। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग बैरागी.
2: This the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition in rag Bairagi by Pandit Baldev Raj Verma.

0: अभी आप पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग बैरागी सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग भैरवी।
1: We're listening to a vocal rendition in राग बैरागी by पंडित बलदेव राज वर्मा। Now listen to a sitar recital in राग भैरवी by पंडित देवव्रत चौधरी।

0: अभी पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग भैरवी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग भैरवी बाय पंडित देवव्रत चौधरी। दिस प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना से, जिसे गाया है मनोहर सबनीस ने।

मनोहर सबनीस ने गाई संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अंजलि केळकर के स्वर में सुधांशु की ये भक्ति रचना।

सुधांशु की भक्ति रचना अभी आपने सुनी अंजलि केळकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राम फाटक के स्वर में संत नामदेव महाराज की ये भक्ति रचना।

संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी राम भटक के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत गोणाई की। आइए सुनते हैं विदुषी मंजरी आलेगांवकर के स्वर में। संगीतकार हैं रविंद्र खासनीस।

विदुषी मंजिरी आलेगावकर के स्वर में संत गोणाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे रविन्द्र खासनीस। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शंकरनाथ बुआ पड़घेकर और सहकारियों के स्वर में ये भक्ति रचना।

शंकरनाथ बुआ पड़घेकर और सहकारियों के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है कुमुद कुलकर्णी ने।

कुमुद कुलकर्णी ने गाई संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना, अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत तुलसीदास की, जिसे गाया है विनायक राव पटवर्धन ने।

विनायक राव पटवर्धन ने गाई संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है धनश्री घाटे ने।